देवी अहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी लूर अरसहु कुरसहु चटिया

0: है वो मृतक हो जाएगा, ओदी मौत हो जाएगी। आप कृपा करके ओनु बचाना करो।
1: उठो आप रचहो सुखदाई।
0: एह करके आप कृपा करके उठो ते उस साडे राजे दी रक्षा करो जी।
1: हिम कह नृप के ढेग ले गए।
0: इस तरह मंत्रियां ने बेनती करके भाई कल्याणा जी नू जिथे ओ राजा बेहोश होया पिया होया ओदे कोल लैके गए हन।
1: परे ओ बीच मेल नर गन पाए।
0: ए करके इत्थे सारे जिन्ने भी मनुख कतर होए हन
1: अवलोकत कल्याण पखाना।
0: सारे नूं वेख के ते भाई कल्याणा जी ने सारियां नूं संबोधन होके ए बचन कीते हन।
1: श्री अर्जन सतगुरु महाना।
0: ऐ भाई गुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी महान सतगुरु हन, पूरे गुरु हन।
1: तिन की सिखी धारण करी है।
0: इस करके तुसी सारे भाई धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी दी सिखी धारण करो।
1: गुर शरदा को और मह धरी है।
0: सतगुरु दे चरणा दा ध्यान धर के उन्हां ते शरदा रख के उन्हां दे चरणा दा

अहनस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामंदी नूर अरसहु।

मन राए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत पेरी रहाओ सह सताव नैन नन नैन हह तोहे काओ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सह तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत तिस भावै सो आरती होए हर चरण कावल मकरांद लोभ।

पशु सुखी ने, महापुरुष ते देवते आनंद दे च ने, मनुख दुख दे च। दुख सिर्फ थानो मनुख दी दुनिया दे च मिलेगा या उन्हां पशुआं कोल दुख मिलेगा जिहड़े विचारे मनुख दी कैद दे च ने, मनुख दी संगत दे च रहिंदे पए। उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा दिता है। जिस ढंग नाल ओह जीवना चाहते ने उस ढंग नाल मनुख नहीं जीण देंदा पिया। ओह दुखी हो सकते ने, ओह पीड़ित हो सकते ने। वरना दुख सिर्फ मनुख दे कोल है, कायनात दे च, इस ब्रह्मंड दे च दुख होर किधरे भी नहीं है। बनस्पति खेड़े च है, पशु सुख दे च ने, कीड़े मकोड़े भी सुख दे च ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक बिष्टा का जंतु भी सुख दे च है, एक गंदगी दे च लिपटिया होया सूअर भी सुख दे च है। मैं फिर अर्ज करा, एक मनुख दुख दे च है, एक मनुख की संगत दे जिहड़े पशु रह रहे हैं मनुख की कैद दे च, वह विचारे दुखी हो सकते हैं। वरना पशु दुखी नहीं ने, पंछी दुखी नहीं ने। पशु जी रहे ने लोड़ा दे तलन की पूर्ति ते, लोड़ा पूरियां हो गई सुखी। मनुख लोड़ा दे नाल नाल जी रहा है ख्वाहिशां दे तल ते। लोड़ा पूरियां ना होवन पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां पूरियां ना होवन मनुख बेचैन होंदा है, मनुख तड़पदा है। ते ख्वाहिशां दा एक होर बड़ा भयंकर नियम है, एक ख्वाहिश पूरी होवे ना ते पूरी होंदिया होंदिया वह दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। जैसे एक मनुख जमीन तो रुखसत होंदिया होया वड्डा हो गया, जवान हो गया, व्याया गया, बुढ़ा हो गया, जमीन तो रुखसत होंदिया होंदिया दो चार पांच सत बच्चियां नूं जन्म दे जांदा है, पिछे अपनी संतत छोड़ जांदा, अपना खून छोड़ जांदा। जमीन तो रुखसत होंदिया होंदिया मनुख दो चार बच्चे छोड़ जांदा है। एक ख्वाहिश पूरी होंदिया होंदिया, एक ख्वाहिश मरदिया मरदिया पांच दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। हुण पूरी एक होई है ते दस होर पैदा होई हैं, फिर उन्हां च पूरी एक होई है ते फिर दस भी होर पैदा हो गई हैं। तो रोज़ रोज़ ते ख्वाहिशां वधदियां जाणगियां, ख्वाहिशां दी भीड़। इस तरह जिवें मौत दर घट जाए ते जन्म दर वध जाए तो मनुखां दी भीड़ हो जांदी है। ख्वाहिश पूरी ते कोई कोई होंदी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। होंगी वह भी कर्म अनुसार है, उंज नहीं। कुछ संत महापुरुखों के डेरे इस वास्ते चल पैंदे, जे सौ बंदे गए ने ते सठ दा ते उंजी कर्म बनन वाला होंदा है, उंजी गल सिरे चढ़न वाली होंदी। वह जिहड़ी सठ बंदियां दी गल सिरे चढ़ जाती है ना, वह कहिंदे ने इस डेरे करके संत करके साडी गल बनी है। वह फिर सठ कम से कम होर सठां नूं ले आंदे ने, उन्होंने चो भी कुछ एक की गलत उंजी बनने वाली होंगी। जो डेरे ना भी जाते भी बननी सी, ये भी मर्ज करते हैं। जो ना भी तीर्थां ते जाते भी बननी सी। बस पखंड इस तरह दुनिया दे वधदा है अग्ञान दे आसरे ते। एक ख्वाहिश पूरी होंदिया होंदिया दस ख्वाहिशां नूं जन्म दे जांदी है। तो इस तरह ख्वाहिशां की भीड़ वधदी जांदी है, वधदी जांदी है। पशु लोड़ां दे तल ते जींदे ने, मनुख ख्वाहिशां दे तल ते जीवदे ने। लोड़ां दी पूर्ति ना होवे ते पशु तड़पदा है, ख्वाहिशां दी पूर्ति ना होवे मनुख तड़पदा है। और सारियां ख्वाहिशां किस दियां पूरियां होईयां कता ही नहीं। एक दिन मनुख ही पूरा हो जांदा है, खत्म हो जांदा है। ख्वाहिशां कितनियां पूरियां होंदियां ने, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। अली कहिंदा एक एक श्वास दे अंतिम समय कितनियां ख्वाहिशां निकलदियां जिहड़ियां अंदर पईयां सन, जगह मल के बैठिया सन। बई अज साड़ी गल बनेगी, अज साड़ी गल बनेगी, गल की बननी, विश्वास ही निकल गया है। हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, दुख केवल मनुख की दुनिया च है। ऋषिकेश दे अज तो कोई गालवन 25-26 साल पुरानी गल होगी, रामकली राग का यह शब्द चल रहा है। सहन सरदान दे इंद्र रोआया, परस राम रोवे घर आया। जब जी साहब तो लेके उथे रागमाला तक संपूर्ण कथा होंदी है। और उथे एक नियम है, पांच साल भोग पाते ने लाजमी, ताकि विद्यार्थियों ज्ञान मिलता रहे।

0: उस दौरान एक महीना दास भी हाजरी भरदा रहे। जदों दास कथा कर रहा सी राम कली लाग चलिया तो यह शब्द भी आ गया जिस दियां आखलियां पंक्तियां सन, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए अवरी कर्म न लेखे पाए। ये पंक्ति मनुख ने अपनी तरफों बनाई हुई है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार, इस तरह की पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, इस तरह नहीं है, ये तो लोगों ने अपने कोलों बना लिया है जिन्हों बोध नहीं है समझ नहीं है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाव सोई जन जाए अवरी कर्म न लेके लाए। इसकी वजाहत दास ने किधरे दो दिन की थी। बड़ा एक दार्शनिक सियाणा साधु सिंध दे इलाके का सी, भेख भगवा, अजकल उसका डेरा करनाल दे च बहुत ज़ईफ हो गया, वह भी किधरे बैठा सी। कथा की समाप्ति तो बाद खड़ा हो गया, साधुआं दा इकट्ठ सी, जो 30-40 सरोते बैठे सन साधु ही सन, निर्मले उदासीन। मैनू कहन लगा, मस्कीन जी, ये जो गुरु नानक ने आख्या है ये अति उपमा अलंकार है। साहित्यिक दुनिया विच, कविता की दुनिया च अलंकारा नू वरत्या जांदा है, गहणिया नू, गल नू सजाण वास्ते, बोलां नू सजाण वास्ते। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, मुख झूठ विभूखन सारंग, ए ब्राह्मण बोलदा ते झूठ पिया पर तू गहने सच दे पवा दिते ने, उसनों बड़ा शिंगार दिता है तू, ते हुण लोगां नू इंज प्रतीत हुंदा पिया जिवें सच। झूठ नू भी शिंगार देईए, चमका देईए, चलदा है, बड़े सोहणे ढंग नाल चलदा है, चलदा सच दे आसरे ते, गहने सच दे ही पवाने पैंदे ने। कोई झूठ अपने रूप में चल नहीं सकता जिन्ने चिर तक उसनू सच नाल ना जोड़िए। झूठ बोलण वाला भी कहिंदा मैं सच कह रहा, जोड़ना उसनू सच नाल ही पैंदा है। भावें झूठ है पर गहने उसनू सच दे पवाने पैंदे ने, शिंगार उसनू सच दा देना पैंदा है। एक तो यह है, एक होंदा है अति उपमा अलंकार। जैसे किसी नूं कह देना तेरे मोत जे दंद ने ते मोतियां वर्गे ने, अति उपमा अलंकार। ये मुखड़ा ते चन्न दी तरह है, अति उपमा अलंकार। साहित्यिक दुनिया विच, काव्य दुनिया विच इसकी अपनी महानता है, इस नूं मनदे ने। मैनूं कहण लगे, गुरु नानक दे कोल हिरदा जो सी उह संगीतकार दा सी ते कवि दा सी, शायर दा सी। इस सतगुरां ने अति उपमा अलंकार वरते है ते तुसी कल ते अज दो घंटे लाए ने, दुख ही दुख है भाई। आसमान व्यापक है ते दुख व्यापक है, हवा व्यापक है ते दुख व्यापक है। कहने लगे मैं सहमत नहीं, ये अति उपमा अलंकार है। ते अति उपमा अलंकार नू इतना स्पष्ट नहीं करीदा जितना तुसी कीता है, मैनू इंज कहण लगा। आखिर मनुखी दुनिया च किधरे आनंद भी है, खेड़ा भी है, खुशियां भी हैं, और इसे नू वजाहत करके ते पक्की मोर ला देनी कि नानक दुखिया सब संसार, शोभा नहीं देंदा। मैं कह महापुरखो, सियाने हो तुसी, चिंतक हो, और उम्र दे लिहाज च वाकई मैं उन्हां दे सामने बहुत छोटा सी, और विद्या पढ़ाई चिंतक दे उन्हां दी दुनिया बड़ी अग्गे सी, क्योंकि विचार वटांदरा अक्सर चलदा रहिंदा सी। पर इस तरह भी वह हिम्मत कर लैणगे कि सारियां च खड़े होके इंज कहणगे। उस दिन मैं उन्हां दी बहबलता देखी, बिल्कुल असहमति, कहण लगे नहीं, ये दो घंटे तुसी लाया एवें जाया कीते, दुख इतना नहीं है। ये गुरु नानक ने अति उपमा अलंकार वरते है जिसनों तुसी हो बहु सच करके बयान पै कर दे। ये अलंकार है, गहना है, भूषण है, वास्तविक ऐसा नहीं है। मैं कहा मैनू ते वास्तविक ऐसा ही दिखाई देंदा है, और जो गुरु नानक ने आख्या ये अति उपमा अलंकार नहीं है। ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਕਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤਨਸ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ 'ਚ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਹਾਂਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਿਉਂ ਦਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਥਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਐਨ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਕੋਣੇ 'ਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਣੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਖਿੜਾਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਆਖਣਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਐਸਾ ਖੇੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਫੱਬਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਅਤਿ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਟਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਸਲੀਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਲਬਨ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਗੁਲਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਹਿਕ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਝਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟਪਕੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਬਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਦੇਸ਼ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਨਿਰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਧਨਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਮੂਰਖ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਬੀਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਗਏ। ਕੜਵੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਲ ਤੋਂ। ਕੜਵੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਗਏ, ਗਲਤ ਬੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਐਸਾ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲ ਇਤਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ, ਸੰਤ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਮ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, इस कर्म चो सुख निकलेगा, इस कर्म चो परम आनंद निकलेगा। और ये नियम परमात्मा ने आप बनाया, अगर कोई दुखी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, बीज ऐसा बोया गया जिस तो दुख निकले है। और ये दुख है तो फिर परमात्मा कसूरवार नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा होया फ्राइड ने किधरे कह दिता कि गालवन 60% बीमारियां जद्दी आउंदियां ने, मां नूं कोई रोग सी ते अगे औलाद नूं हो गया, और प्यो नूं कोई रोग सी ते अगों पुत्र नूं हो गया, जद्दी रोग। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे शरीरक रोगां लई तू जिम्मेवार नहीं, तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। ते हुण संस्कार भी शुरू शुरू च मां बाप देंदे ने, बोलना सोचना ये पहले पहले तो मां बाप तो ही मिलता है जो है मनुखी बच्चे ना। तो फ्राइड ने ऐसा कह दिता तेरे सोग ते चिंता लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, और तेरे शरीरक रोग लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मां बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया किया सी जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर नूं कि दुनिया दे इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्हां कोल औलाद पैदा करन दा हक खो लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया दे रोगी ही रोगी होणगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या, तेरे शरीरक रोगां लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई मां बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानां ते, और मां बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी। इस ख्याल तो कार्ल मार्कस ने एक होर चोट कर दी, तेरी आर्थिक औकड़ा लई समाज जिम्मेवार है, तू जिम्मेवार नहीं। तेरी आर्थिक तंगियां लई, तेरे आर्थिक कलेश लई, तेरे आर्थिक संताप लई समाज जिम्मेवार है। हुण मेरियां आर्थिक जो है कमजोरियां ते दुखां लई समाज जिम्मेवार है, मेरे शरीरक रोगां लई मेरे मानसिक संताप लई मां बाप जिम्मेवार ने, मैं तो सुतंत्र हो गया, मेरा तो फिर कोई कसूर ही नहीं। फिर तो हर बंदा बेकसूर हो गया, फिर तो मेरा कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष मां बाप का हो गया, दोष समाज का हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रोशनी च फ्राइड के ख्यालों लईए, कार्ल मार्कस के ख्यालों लईए, साहब कहने मां बाप दोषी नहीं ने, समाज भी दोषी नहीं है, फिर कौन दोषी है। दद्दा दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कोई मां बाप दोषी नहीं ने, कोई समाज दोषी नहीं, तेरे दुखां लई तेरे कर्म दोषी ने, तेरे दुखां लई तू जिम्मेवार है, ना मां बाप ना समाज। तू किसे नूं जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, तू अपना दोष किसे ते भी नहीं सुट सकता। तेरे दुख लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरियां आर्थिक औकड़ां लई तू जिम्मेवार है, ना समाज जिम्मेवार और ना ही मां बाप जिम्मेवार। तू स्वयं दद्दा दोष ना काहू, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। कर्म एक ऐसा बीज है, और ये बीज तेनू परमात्मा ने खुले रूप दे दिते, अदृश्य रूप रसना तेरे कोल है, तेरी मर्जी है। तू सच दे बीज बो भावें झूठ दे, मिठास दे बीज बो भावें कुड़त्तन दे, हाथ तेरे कोल ने भावें गलत कर भावें ठीक कर, पैर तेरे कोल ने भावें गलत पासे जा भावें सही। लेकिन इतनी गल चेते कर ले, तेरा हर कर्म एक बीज है, और इस बीज तो फल पैदा होगा। अपने कर्म प्रति तू सावधान हो। ते कर्म तीन तरह के ने, शरीरक मानसिक वाचक। जो मैं मन नाल सोचिया चंगा या माड़ा मानसिक करम, जो मैं जबान नाल बोलिया चंगा या माड़ा वाचक करम, जो मैं हथां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा शरीरक करम। इन्हां तिन्नां ही करमां दे जोड़ तों उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल किसे नूं भी दोषी ठहराण दी लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं होणगे। कर्म ही ते बीज सन। ते मैं फिर अर्ज करां, मनुख हर बंदा जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट वेख सकता है, अज भी वेख सकता है ये बीज ठीक नहीं ने, इहदे चों फल ठीक नहीं निकलेगा, इहदे चों फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे च फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे च दुख सुख दा फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां दी छटाई कीती साइंटिस्ट ने, कर्मां दी छटाई कीती संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इन्हां कर्मां नूं जिंदगी तो एक पासे कर दो, नहीं तो दुख ही दुख होणगे। और इन्हां कर्मां नूं झोली दे च पा लो जे सुख तू चाहना। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਸੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ, ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमजोर ने। उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, उदे नेचल होने का सबूत कितों मिलता है? उदा नियम नेचल है। भारत का जो राष्ट्रीय विधान है ना, जिसके मुताबिक मुल्क नु चलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज्यादा दफा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है 150 तो भी वध। जब जब देखा गया विधान ये मुताबक देश नु चलाना औखा है, तब्दीली ये मुताबक देश नु चलाना औखा है, फिर तब्दीली। इसका मतलब 150 दफा पहले हुई है। जी पहले उस विधान नु सही मन के देश नु चलाया जाता रहा, तो साल दो साल बाद दस साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे होए ये भी कोई सही है, इहदे च भी संशोधन करना पै, और कितनी दफा करना पै, 150 दफा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यह मतलब वो कोल भुलां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने। उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है, फिर उहनूं भी ठीक करना पैंदा है, उन्होंने भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्होंने भी सोचना पैंदा है कि इहदे मुताबक जगत नूं चलाना औखा है, और इहदे मुताबक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान विच जो है तब्दीली करा, नहीं, सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, परमात्मा सच्चा है, उहदा नियम सच्चा है, उहदा दरबार अटल है, उहदे च कोई तरमीम नहीं, उहदे कोई संशोधन नहीं। कर्मां दी विचार आउंदी है, उसके दरबार विच किस ढंग नाल आउंदी है, ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुक्ते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी ते अपनी चाल नाल चलदी है, ते कल दी तरह मैं गुस्ताखी ना करां, क्योंकि पिछे जथियां ने कीर्तन भी करना हुंदा है, और महापुरखां दी इत्थे विचार आउंदियां ने, इतनी जो है प्रवान करनियां। दास ने अगे जाके 7:45 गुरुद्वारा सरी दे जो है हाजरी भरनी है, उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा उसनु उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारे दे इस ढंग के प्रश्न सन, ते ये प्रश्न अपने आप दे इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत दे मुताबक 15 दिन ते मंगदा है इनू निखेड़न लई। तो एक दो दिन दे ची दास ने निखेड़ा करना है, भावें इस संबंध च गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरदास जी ने इस दे उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनी राया पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सकया थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, मेरे दुखां लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखां लई मैं दोषी हाँ। दद्दा दोष न देऊ काहूं, दोष करमा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घटदियां ने। जिस वक्त मनुख सुनदा है उस वक्त ही समझ आ जाती है, उस वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड घटती है, एक सैकंड घटती है। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुनिया, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विचलीन हो गया, जुड़ गया। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थे, ऐ ज्योत दे ज्योत हो गए, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी इक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूट है। निमक निमक एक सैकंड है, एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन एक निमक, इनू अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा होवे, गुप अंधेरा होवे, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे? नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरा दे पाप दुख संताप ते अंधेरा, इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे? नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर। ते एक दम ही आज है, बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजनिया मनो मचिंदनिया। मैं पानी हुण पीवा प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी, मैं भोजन हुण छका हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है, मैं नाम हुण जपा फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल दो साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ए भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज का तत छिन। टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ हाजर हजूर खुदा। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी, मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े होवे बड़ा जोर दा ते ओह डॉक्टर नूं कहिंदा है जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहां, कहिंदा छेती कर जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े होवे हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होके जीवदे ने और निराश हो जाते ने भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्हां नूं ऐ दवाई ले लो ऐ दवाई ले लो, उन्हां दे अंदर निराशा है। रोग दे जीण दी आदत बन गई, विकारां दे जीण दा सुभाव बन गया, हुण ठीक होण दा ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाई। नहीं ठीक हो सकांगे, इहदे जीवना पैगा। जैसे जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्रायड ने कहा है, हंकार विच काम विच क्रोध विच लोभ विच जीना पैगा, इहदा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकदा, जीवन नूं छड़ नहीं सकदे, इन्हां दे जीवना ही पैगा। यूरोप दे पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश कीता है, जीवना ही पैगा, इहदे जीवना पैगा। उन्हें ऐलानिया किया, भारत दे संत गलत कहंदे ने, मन विच राम है, कहंदा नहीं मन विच काम है, मन विच निरंकार है, कहंदा कथा ही नहीं मन विच हंकार है। वो इंज कहंदा है, कहंदा मैं मन नूं फोल के देखिया, सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है।
मैं मन नु फोल के देखया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है। मैं मन नु फोल के देखया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। हमें कही जाने राम है मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछा एक सीमा तक को ठीक कहता है। एक सीमा तक जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने या कुछ लबण गया मछलियां ने शंख ने सिपियां ने मोती ते गहरे करते किसे किसे दे हाथां उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने कामनावां ने वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा तन विच मन है मन विच सच तन विच मन है मन विच प्रभु है मन तों जोत स्वरूप है अपना मूल पछा खेड सारी पहचान आंदी है जिसनों मैं नहीं जानदा ओ नहीं है जिसनों मैं नहीं समझदा ओ नहीं है जो मेरे चेते च नहीं ओ नहीं है जो मेरी स्मृति च नहीं ओ नहीं है जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सीखे। 2 साल बाद 2.5 साल बाद 1.5 साल बाद बच्चे चल देने पैर पुट देने खड़े हो गए कि 4-5 साल का बच्चा हो ते बच्चा चले ना मां बाप नु चिंता हो जाती है। गल की है बच्चा खड़ा नहीं होता पैर नहीं पुटता 4 साल का हो गया 5 साल का हो गया डॉक्टरों को ले जाने वैद्य को ले जाने 3 साल का हो गया 4 साल का हो गया मुंह अक्खर नहीं निकलता बोलता नहीं मां बाप नु चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है अक्सर मां ही निकलता है घर दे खुशियां मनाईया जाने घर दे प्रसाद वंडते हैं मिठाइया वंडते हैं नचते ने टपते ने बच्चा बोलन लगते है। जिस दिन बच्चा कदम पुटे बच्चे ने कदम पुटे चलन लगते है चलो एक कदम ही सही कदम ते पुटे खड़ा ते होए कोई 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द दी तरफ यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जांदी है गल की है इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे 50 साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे आ अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे गुरु नूं भी चिंता हो जाती है बोलना ही नहीं आया बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही इन्हू बोलना ही नहीं आया ये बोलता ही नहीं 50 साल का हो गया बोलता नहीं पे 30-35 साल हो गए ने इन्हू ये चलता ही नहीं चलना ते सुरत ने जपना ते रसना ने रसना नाम जपो तब मतिए इन बिद अमृत पाओ जपना रसना ना लो और जपन दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है गाविए सुनिए मन रखिए जबान गायन करे ते मन सुने मन स्रोता बने जबान वक्ता बने अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया जबान वक्ता ते बनी है मन स्रोता नहीं बने ये चलते पे पहुंचे कोई जबान वक्ता ही नहीं बने जपदा ही नहीं ते उस बच्चे की तरह होया 4-5 साल का हो गया मुंह बोल नहीं निकलते पे मां बाप नूं चिंता गल की है बोलदा ने डिगना की है ते चलना की है सत्संग विच आया है, चल पे है कुछ संगत विच बैठा है डिग गए सच बोले है चल पे है झूठ बोल रहे है डिग पे है दान कीता है चल पे है बेईमानी कर रहे है डिग पे है
अमृत दी प्यास पैदा हुई है, चल पे है, शराब दी तलब जाग पई है, डिग पे। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना कई आंदा। हाथ दे च गुटका है, चल पे है, पर गंदे गीत अलाप रहे है, डिग पे है। तुसी देख सकते हो, चल देने डिग देने चल दे सारी जिंदगी, चल पैने डिग पैने, कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ, फिर उत्थे ही आ जांदे ने जिथों चले। हुण सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे ते एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा, चाली चाली साल तो जेडे गुरुद्वारे आ रहे ने, चाली साल पहले क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। चाली साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने। चाली साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने। और चाली साल पहले वासना दे भरे हुए सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने। चालीस साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। खेड़ते कुछ भी ना, चले ने चल चल के, थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी ने, किधरे भी। हे प्रभु, मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर, तू मेरी बांह पकड़, ताई खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुरु की बाहां दे मोहे निस्तार। गुरु गोविंद सिंह जी, हे प्रभु अपनी बाह दे, अपनी बाह पकड़ा ते डिगण तो बचिए। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने, ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुन सकदे। ये हकीकत है महाराज। मेरे कोल ओ कन नहीं, सतगुर कहिंदे ने, जो तैनूं सुन सकदा। मेरे कोलो जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं, ये प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचावा। पहुंच दिए गल रब तक भी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। जा का कहा दरगे चले, महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलदा है, परमात्मा सुनदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जी, मैं तेरे कन दे च गल करनी है, थोड़ी करनी तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलदे ने प्रभु सुनदा है, क्यों? उन्होंने बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल, दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकती है। जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहिब कहिंदे ने सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आपदी ग्याथ लई अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दां दे अर्थ भाई गुरदास जी ने आप कीते ने। जिहड़े जिहड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकदे सन, लोकी धोखा खा सकदे सन, भाई गुरदास जी ने उन्हां नूं खोले।
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत माता इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुरु शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलदे हां पवन करके बोलदे हां, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंदी पानी ते शरीर च है, मिट्टी दा ढांचा भी पिया, पवन नहीं रहेगी तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए ही। बोल के ही संबंध जुड़दे ने, बोल के ही संबंध टूटदे ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलदे ने, मुद्दतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नूं तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड ते सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उथे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उथे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूड़े होवन कहिंदा उथे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना है। वाहेगुरु वाहेगुरु ताई रसना जत सकदी अंदर श्वास चलन, पवन है। भावे पानी पिता है, भावे धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़दा है परमात्मा नाल। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़दा है, परिवार नाल संबंध जुड़दा है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़दे ने, संसार नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने शब्द। ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलां तो हुंदा है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमई है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाना है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस देंदे। हत्थां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मत्थे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलां तो पता चलता है। ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च हंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास खोल दे। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आखिया गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दी, शब्दां नूं खोल दी। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन्न कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन्न भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत्थे सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं। ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट,
ना दर्श दिखाए वे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए, कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्र गुण सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुछा सका जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरुदास कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायिका कहाइए। भाई साहब भाई गुरुदास मन में गुरमत गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनन वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा है ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मत्था टेकन का मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इतने रखना, गल खत्म, मैं अपना विचार के मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इतने रखना, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है, गुरु की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल धन संपदा नाल परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोहे मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिसम नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई ये बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। इहदा मतलब है विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी है। पर कई दफा जब बिरद हो जांदा है, बुढ़ा हो जांदा है, उदों कहिंदा ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण लै तो, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहिंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है ते सारी गवा के आ गए, सतरां का मत हीण असियां का व्यवहार ना पावे, रही कित्थे। इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा, शेख सादी साहब ने कहा है, दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। जिड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे, शेख सादी साहब कहिंदे ने उहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है, ते पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा, जवानी ते शील ते संजम, जवानी ते अपने आप ते काबू, इहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है। पर बुढ़ा हो गया तो कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, ये फकीर कहिंदा मैं नहीं मनदा। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेज, क्यों नहीं मनदे? दलील दिती है, एक बुढ़ा बग्याड़ अगर ये आखे ऐ पेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया, उसको पकड़िया ही नहीं जाती, गलत ही नहीं। बुढ़ा बंदा कहिंदा है मैं गुनाहां दा त्याग कीता है, कता ही नहीं, गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाहां ने बैठना सी अखां दे च, रसना दे च, कन्नां दे च, हत्थां च, पैरां च, इते सारियां कुर्सियां टुटियां पईयां, बेचारे गुनाह कित्थे बैठा, केड़ी थां ते बैठा। कहिंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, कता ही नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शबद परहेजगार। भाई साहब कहते मन में गुरमत गुरमत में ना मन, जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता।
जो मेरी सोचनी है ये गुरु नु प्रवान नहीं है, और जो गुरु दी सोचनी हो मैनू कबूल नहीं। मन में गुरुमत, गुरुमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। अंग अंग टूटे आया है, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंदा है सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होवन ते पत्थर ते बंदे विच फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर कुछ कर नहीं सकदा। अगर मनुख परमात्मा नु वेख नहीं सकदा, सुन नहीं सकदा, परमात्मा नाल बोल नहीं सकदा, अपने बोल पुचा नहीं सकदा, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते, कि कम से कम धार्मिक तल ते ते बंदा पत्थर ही। और की है, मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अद मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई दे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थल्ले कीती सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुणिया तुसी कहिंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे केड़ी शक दी गल, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे चल हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे आ चल, वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी, चल पैणा चल पैणा। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारिया नूं ती चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही, कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लैंदी, जिन्हें मुहम्मद साहब ते सब तो पहले श्रद्धा लैंदी वो खदीजा सी, उन्हां दी पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक ते श्रद्धा लैंदी वो बेबे नानकी सी। इत्थों सिखी चली, खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी कि इस्लाम नहीं बदलना सी, ये भी मैं अर्ज कर दें, उन्हें कबूल कर लिया। मोहम्मद ये बोल थोड़े नहीं ते खुदा दे लगदे। ते मोहम्मद साहब भी कहन लगे खदीजा तू ठीक जाने, मैं ते चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलदा। गुरु नानक कहिंदे ने हो आपो बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोलदा, पता नहीं परमात्मा की बोलता। जैसे मैं आवे कसम की वाणी कैसड़ा करी ज्ञान वे लाल। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली। खैर बाबा मस्जिद दे पहुंच गए, कतार दे खड़े हो गए, इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल एक गाथा लिखी और वक वक ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं ने, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा सब गल्लां ही गल्लां ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है, तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ी। महाराज कहन लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबुल विच घोड़े पिया खरीद रहा, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा ए सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी। हैरान हो गया नवाब,
नमाज पढ़ता है घोड़े पिया खरीदा सी, कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीदा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीदते हैं, कौन गुरु नाल जुड़ता, सब अपने अपने घोड़े खरीदते अपनी अपनी गल्लां च उलझे होंदे, अपने अपने झमेलियां विच फसे पए होंदे। कदी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा है वो हथ केड़े ने फिर जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने। गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण, मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहिंदे टुंड आए दे कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं, समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं, परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, तीन तीन चार चार लाए, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगर टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा, घर जुतियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखदा। बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने हां दूरी, सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना, भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उदी हर गल ते भरोसा सी थोड़ी कर दे, बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होने वास्ता। कई दफा किसी ते साडा भरोसा ते पक्का है भाई बंदा काबले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने उहनूं कहिंदे ने भावना। कर भाव के, हथ बना भावना दे, पैर बना भय दे। परमात्मा का भय होवे पैर गलत पासे नहीं जाणगे, परमात्मा की भावना होवे हथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोयण सुरत करे, अखां बना ज्ञान दिया, समझ दिया, सुरत दे ते अर्थ समझ, समझ दिया अखां बना, लोयण सुरत करे। नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा, इस तरह मिलावा। इकबाल कहिंदे ने दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, के आंख का नूर दिल का नूर नहीं, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, के आंख का नूर दिल का नूर नहीं, इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बाहर दा अक्षय ज्ञान, उहदे च भी कोई गल होवेगी पर रस तो ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होंदा है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नूं बदल देवे। अनुभव प्रकाश लोयण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा होए। जितने चिर तक समझ दी अखां नहीं ने, गुस्ताखी माफ नेत्रहीन है, भावना नहीं है ये टुंडा है, पै नहीं है ये लंगड़ा है, अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गुंगा है, ये तो गुंगा है। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होंदा, ये तो बहरा है, ये कितने सुनता है, ये तो बहरा है। महाराज कहिंदे ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए, पहला पातशाह वाक सतगुरु नानक देव जी महाराज दा वाक, रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए, जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है इनू परमात्मा कित्थों नसे,
अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दे। बच्चे कुल अंग नहीं ने, हाथ हैं कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता, सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दूध मिलता है, खुराक मिलती है। एक दिन इसके हाथों च ताकत आँदी कुछ करन लग पैंदा, एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है चलन लग पैंदा, एक दिन कुवत ते गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा। शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया जपदिया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देन लग पैंदा, एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देन लग पैंदा, एक दिन उसका दामन हत्थां दे चाह जाता है, एक दिन ऐसा महसूस होंदा सी कि परमात्मा की गोद च बैठे। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुख का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना हो अखा नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नु वेख सकदी, वो कन भी नहीं मिलनगे जो सुन सकते, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, भोजन की बुरकी मुंह ते रखते हैं स्वाद आ गया, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया रस नहीं आया। क्यों? अजे जबान दे चो तौफीक नहीं है, वरना वाहेगुरु आखण का भी अपना रस है। जिन्हों वाहेगुरु आखदे आ रस आवे, साहब कहने परमात्मा उदी रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। वाहेगुरु ते दी जबान ते, क्यों? ये वाहेगुरु आखदा है रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है, बाणी ते दी रसना ते वस गई, नाम ते इसकी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहेगुरु वाहेगुरु आखदे आ रस ना आवे, अजे वाहेगुरु रसना ते नहीं वसया। ते जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया, अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा, परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी, भोजन पहले जवान दा रस बनता है, खून बाद दे च बनता है, मांस बाद दे च बनता है, हड्डियां दी ताकत बाद दे च बनता है, इंद्रियां दी शक्ति बाद दे च बनता है, रस पहले। भोजन की बुरकी का रस आ गया, स्वाद ते पहले आ गया, हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहेगुरु आखदिया जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस गए। अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां दे च भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन, अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा। पर इतनी गलती स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसा, अजे हनूज दिल्ली दो रस्त, रूहानी बल रूहानी शक्ति, अजे वेखना उस प्रभु नु सुनना समझना अनुभव प्रकाश, वो ते लंबी गल है। अजे ते आखदे आ रस भी नहीं है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना दे च बरकतां आ जांदियां ने, बोलां दे च बरकतां आ जांदियां ने, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां ने जपदे आ जपदे, एक दिन कदमां दे च क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदे आ जपदे आउंदा है। महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकते, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेउ सेती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए काम नो हथ पांदा डै डेरी हो जांदा। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए काम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा है। महाराज कहिंदे ने हथां च बरकत, पैरां दे सत्या,
ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है, और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने, और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है, और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है? चाया सी कुछ हो गया कुछ, सोग। मंगी सी कुछ और चीज, मिल गई है कुछ और, सोग। जाना सी किसे होर पासे, पहुंच गए किसे होर टिकाने ते, सोग। आवना सी किसे होर ने, आ गया कोई होर, सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है, सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हाँ नहीं आता, और उस तो विपरीत हो जाता है, तो मन सोग नाल भर जाता है। हर नवा दिन नवे सोगां नू जन्म देंदा है, क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है। ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए, तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जाते हैं। कबीर कहिंदे ने, जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे, जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही, तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है, पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वत्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे च है, तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो, ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग दे च हौके आउंदे ने, सोग दे च पछतावे आउंदे ने, सोग दे च साड़े आउंदे ने, सोग दिच जलन आउंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस दिच मनुख दी सोचण शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन दिच रोग होवन, मन दिच सोग होवन, तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक दे जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है। ए नरक दे जी रहे है। नरक ही क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक दे जी रहे है। तन दे च रोग ने, मन दे सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे हैं, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। आज तक मानसिक सोग नू दूर करने वास्ते जितने मनोरंजन आए ने, और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नू मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जाता है। हर तरह का मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है।
चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया है। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग दे किस तरह ग्रस्त हो जाता है, किस तरह फस जाता है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देता है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़ता, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनता, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देता है, और सोग मन को इतना सुकोड़ के रख देता है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दे बैठना चाहता है। सोग इसनों महफिलों दे नहीं बैठन देता, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देता, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देता, सोग संकोच के रख देता है, सोग सिकोड़ के रख देता है, सोग निचोड़ के रख देता है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नू जन्म देता है, कितने तरह की मानसिक बीमारियों नू जन्म देता है। इत्थे तक कौन पहुंचाता है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचादियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इसनों इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही हैं ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसदी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा
पूरी करण देच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है बावे नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी ले है पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहे है दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नू पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाठ कितना गहरा है ए चौड़ी कितनी है ए गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नाप तोल देच नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ां नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही ये इसनू उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है तृष्णालु है ए तृष्णालु क्यों है एदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने एदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन देते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इदा पाठ किन्ना चौड़ा है ए गहरी कितनी है इक्को ही नदी है जो मन विच वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है ना गहराई नाप दे चाहुंदी है वो है आसा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया बकायदा फैसला भी कर देता है बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है और सो

0: ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनी सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी। इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां होईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे पक्की जिंदगी किसनू मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

काम चली जाएगी। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत ना हार है। एक सवैया होर, काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है। वो किसी कामना दीन थोड़ा दे रहे। मैं बेनती करा जेड़ा बंदा कदी गुरुद्वारे नहीं गया रब तां उहनूं भी रोटी देंदा पे। उहनूं नहीं कि तू मैनूं बंदगी कर ना कर। तू वेखो यह सानू है। असीं कहांगे यार जे आ लोक ना आए तो मेरे फील्ड का की बनेगा, आ ना होया तो मेरी वोट का की बनेगा। वह कहिंदा तुसीं सारे मेरे विरुद्ध भुगत जो, मैं फिर भी कल्ले दा कल्ला पूरा हूं। तुहाडी हस्ती की मैनूं ला ला सको? रब नूं कहिंदा जम्मे लाण वाला, उहदी तां बदली कोई नहीं होणी। उहनूं तां महाराज जी ने कहा कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेचर चौर छत। उहनूं काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, हरख नहीं, सोग नहीं, भोग नहीं, पै नहीं। अपनी बॉडी है कोई नहीं। देखो गुरु साहब की उडारी, अपना शरीर कोई नहीं, सारे शरीर वाले की चिंता करी बैठा। आ दिसदा कोई नहीं, अन दिसदा दिसदे नूं पाली जांदा। भाई काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पै है। देह विहीन सने सबो तन, देह विहीन अपनी कोई बॉडी नहीं, सारे शरीर प्यार कर दे। देह बिखीन सने सबोतन ने ब्रखत अगे अच्छा है। घर भी कोई नहीं, मोह तो भी रहत है। महाराज कहंदे ने काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मा पतले। मैं फिर बेनती करांगा, सो करता चिंता करे जिनु उपाया जग। मेरे गुरु गोबिंद सिंह एक उन्हां दी रचना चो मैं होर अर्ज करनी चाहना। पुरातन समय पता की सी जी, जदों राजे जां बादशाह नूं कोई लैटर चिट्ठी लिखी जांदी सी उहदे लई पहला बड़े सत्कार ते विशेषण लाए जांदे सन। जहां पना भगवान ईश्वर दो आलमां दा मालिक, इथों तक रिजक दाता प्रजा पालक सारे सन शब्द। सोचना जिद्दन सतगुरां ने जफरनामा लिखिया, किसे थां ते मैनूं दसो जफरनामे च विशेषण ला के क्या कि औरंगजेब तू लोकां नूं रिजक दान है, तू रिजक दाता, तू प्रजा पालक है। ओ देखो इस इन्हां शेरां नूं पढ़ के पहले शेर विच क्या, अज तक लोग तेनूं चिट्ठियां लिखदे ने प्रजा पालक रिजक दाता जां पना। कहिंदे ने मैं पहले शेर च तेरी गल नहीं करांगा, पहले शेर च मैं उस रब की गल करांगा जिहड़ा सब नूं रिजक देण वाला, जिन्हें तेनूं भी राज दिता। कमाल ए करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम, जिहड़ा सब नूं रिजक देण वाला है। परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु गुरु नानक साहब दे बोल ने कहन लगे, ओ परमात्मा कल्ला सानू ही नहीं, आ रुख दे उत्ते आलना है। आलने नूं बीजड़े ने बना दिता, जलो चलो वह सारा पंछी ने बनाया, उहदे आलने च हाथ मारो कोई सोना नहीं, कोई हीरे नहीं, कोई मोती नहीं, कोई दाणिया दा ढेर नहीं। की कला पंछी उहदे निक्के जे बच्चे, उहनूं पुछिए तैनूं चिंता नहीं? आ जिहड़े निक्के निक्के वोट तेरे निक्के निक्के बच्चे पए ने जिन्हां दे खंभ भी निकले, ते महाराज कहिंदे ने पंछी कहिंदा चिंता काहदू करां, जिन्हें सवेरे जिंदगी दित्ती है मेरे ते बच्चियां नूं रोजी भी दे देगा। महाराज कहिंदे ने करते नूं चिंता है। इह सतगुरु दे अमृत बोल ने, हजूर दे बचन ने, ना रिजक दस्त आ कसे मांझ की वार। चलो कुछ लफजे च फारसी दे ना रिजक दस्त आ कसे, दस्त दा अर्थ हथ, साडा रिजक रब तो बिना किसी होर दे आ हथ विच नहीं। सिर्फ सो करता चिंता करे ना रिजक दस्त आ कसे हामा रा एक आस वसे खमारा, पाठ कथा नहीं। फारसी विच खमा दा अर्थ सब ते रा दा अर्थ नू, इहदा अर्थ होगा सानू सारिआं नूं रिजक देण वाला केवल एक करता पुरख वाहिगुरु। ना रिजक दस्त आ कसे खमा रा एक आस वसे, सानू सब नूं एक दी आस है। अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई। महाराज कहिंदे ना परंदे ग्रह जर, उड्डन वाले पंछियां कोल केड़ा धन ते केड़ा रोटी दा समान। परंदा ना ग्रह जर दरख्त आप आस कर, रुख ते बैठा पानी। मैं फिर बेनती करा पानी दे कंडियां ते बैठा, रुखां ते बैठे
پرندہ نہ گراہ زار درخت آب

पास कर देहांत सोई। एक तुई सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। थोड़े जेदे अर्थ आप अज कर जाइए। महाराज कहिंदे ने फिर बंदा की करे, इस गल नूं ध्यान नाल सुणो। चलो अगे तरत सारे हो गए ना जी, सारे काम वाहगुरु दे कीते, पुरखां बिरथां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां, इह च नहीं कहा बंदिया तू की कर ले। उन्हें कहा सारी सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, इह च नहीं कहा बंदे तू की कर। अगे महाराज जी ने जिहड़ा इह वचन कीता कि करते ने सब कुछ बनाया, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। हुण असी की करिए? मेरे बाबा नानक जी कमाल कर दिती, कहन लगे तिस जोहारी स्वस्थ तिस। ते दो लफज, एक तां इहदा पाठ औंकण ला के नहीं करना। पाठ इत्थे जोहारी है, जोहारी नहीं, होड़ा ला के पाठ है, औंकड़ ला के नहीं। जजे नू होड़ा, हाए नू कन्ना, रारे नू बिहारी, जोहारी। ते एदा पाठ जुआरी भी नहीं करना। जे जुआरी कई वारी सुनी दा ना जी, मैं किसे इंडिविजुअल बंदे ते तर्क नहीं कर रहा, पर अक्सर जे जुआरी पाठ करोगे ते जुआ खेडन वाला बन जाएगा, ते जे जुहारी पाठ करोगे ते एदा अर्थ मत्था टेकना बन जाएगा। नमस्कार कर दे तिस जोहारी। महाराज कहने तू चिंता ना कर, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। तू की कर? बस एक सियाना पुत्र बन के पिता दे सामने मत्थे टेकी, ओनू नमस्कार कर, ओदा शुकराना कर। बस आज सलोक दा तत् भाव कह लवा, तू चिंता ना कर। तिस जोहारी स्वस्थ तिस, ए लफ्ज है स्वस्थ, एदा अर्थ तंदुरुस्ती नहीं। स्वस्थ दा अर्थ है कल्याण मंगलमय। एदे अर्थ आम टीकाकारा ने कीते ने, तेरी जय होवे, जय जयकार कर। एदा अर्थ है तू सिर्फ दो काम कर, एक तू गुरु अगे मथा टेक, करते अगे झुक जा, दूजा काम कर बंदे दी जय जय दी थां ते इको गल कह, मेरे परमात्मा दी जय जयकार। इनू आसा की वार विच जिस दा दित्ता खावना तिस कहिए शाबाश, वाह तेरे परमात्मा, वाह तेरे। बस इन्हें कहना, ओ देखो दो गल्लां बस, एवें चोखे चोखे भजन की लोड़ ही नहीं, अमल च ले आएगी। तिस जोहारी जिन्हें जगत उपा के चिंता की, तो उन्हें मत्था टेक दे, नमस्कार कर दे, स्वस्थ तिस, ये कह दे तेरी जय जयकार होगी, मंगलमय तू, कल्याणमयी है, तन तन तेरी। मैं एक दिन अर्ज इतनी की सी कि रब नूं भी शबाश कही जाओ, ते भी यह सिफत जी, बेअंत बेअंत कही जाओ, यह भी नाम जे। तिस जोहारी स्वस्थ तिस। ते महाराज कहिंदे किस नूं? अगे वचन कीता तिस दीवान अपग। दीवान दा अर्थ है दरबार। आ जिहड़े लोकां नूं दरबार ला के दिंदे पए ने ना, इहनूं बिलकुल द्वेष नाल जायो कि फलाने थां ते राजे दा दरबार लगा, सीएम दा दरबार लगा, पीएम दा दरबार लगा, मंत्री ने लाया, संगत दर्शन हो गया, आ हो गया। यह सारियां खेडां चलदियां ने दुनिया च, रब दी बनाई है जी। कहिंदे ने ये दरबार एक दिन मुक जाणगे।

परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हाजूरी अंदर उन्हां महान पवित्र आत्मावां दी याद विच जिन्हां ने इस मृत मंडल दी यात्रा कर दिया होया सिमरन और सेवा ते अतुट गुरु भगती नू अपने जीवन दा आधार बनाया उन्हां नू अज आप जी याद कर रहे हो। हुणे ही साडे अति सन्मान योग निम्रता दे पुंज संत बाबा सेवा सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरख असानू सारयानू नाम दी वड्याई नाम दी कमाई और निम्रता कमाउन वास्ते रूहानी उपदेश दृढ़ करा रहे सन। आओ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन आपां सारे रल मिल के हजूर दे पवित्र बचन विचार सकीए और भावना नाल श्रवण कर सकीए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। महापुरखा ने वख्यान दी विचार दी समाप्ति इस उपदेश नाल कीती कि असी जिन्ना महापुरखां नू अज याद पै करने हां महंत जवाहर सिंह जी और बाबा तारा सिंह जी उन्हां दे पाए हुए पूर्णे अते और उन्हां दे कमाए हुए जीवन तो सेध लेके आपां भी इस पंथ ते इस मार्ग ते चल सकीए। उदो मन च विचार आया कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी विच जिथे भी किसे भगत साहिबान दी कमाई वाले दी गल कीती गई उन्हां दी वड्याई दे नाल नाल जो वड्याई कर रहे सन जो वड्याई सुन रहे ने उन्हां नू भी प्रेरणा दित्ती है कि तू भी इस मार्ग उत्ते चलण दा यतन कर। जिवें कबीर साहिब जी ने दो महापुरखां दे नाम अपनी रचना विच दित्ते ते सानू कमाई करन वास्ते कह गए जे नाम जपना है ते इस ढंग नाल जपो कि राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। क्योंकि महापुरख दा जीवन केवल वक्ती नहीं वक्ती दा अर्थ के जन्म होया अंतला समा आया ते जीवन दी कहानी खत्म नहीं। महापुरख दा जीवन सदीव काल वास्ते है ते जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी इस गल दी गवाही दे रही है कि जुगां पहला भी सदियां पहला भी ते अज भी बाणी कह रही है जे नाम जपना है
ते इस तरह जप जिमें ध्रुव ते प्रहलाद ने जपया होए ता ओ महापुरख जुगां पहला ने, पर याद रखो वक्त दी दीवार विच कैद नहीं, जिन्नी देर तक इंसानियत रहेगी उन्हां महापुरखां दा नाम भी जुगो जुग अटल रहेगा। वक्त ही नहीं, एक बचन होर है, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह सोरठ राग विच हजूर दा बचन है, ते उस बचन विच गुरुदेव ने चार प्रमाण दिते ने, ते हर एक तुक दा अद्धा हिस्सा तां साखी रूप च किया, इतिहास किया, ते अद्धा हिस्सा जो है तुक दा ओ वर्तमान विच जेड़ा बंदा सुन रहा है, जेड़ा पढ़ रहा है, जेड़ा विचार रहा है, ओनू कमाण वास्ते कह दिता। ए बचन है कि मन रे प्रभ की शरण विचारो, हे मेरे मना तू परमात्मा दी शरण दी कदी विचार कर, परमेश्वर दे नाम दी शरण कैसी है। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी, सी दर्थ वर्गी के जिस परमात्मा दे नाम नू सिमर दिया गनका वर्गी तर गई। ए इतिहास दा एक पक्ष है, ते नाल अगला बचन ओ वक्त विच नहीं बजा, कह लगे तां को जस उरतारो, जिस नू गनका नू जिस जस ने नाम ने पार कर दिता मना, उस गनका वर्गी दे तरन दे सहायक जो नाम है ओनू तू अपने मन विच धारण कर ले। इदा मतलब के इतिहास दियां पैड़ां सानू वर्तमान जीण वालियां नू भविख जीण दी सोझी दिंदियां। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी, तां को जस उरतारो, अटल भयो ध्रुव जांकै सिमरन, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी तैं काहे बिसरा है। तू क्यों नहीं चेते करदा पिया जिस नाम ने ध्रुव नू अटल कर दिता। जब ये शरण गही कृपा निध, गज ग्रह ते छूटा, हाथी ने परमात्मा दी शरण लई, ते तंदवे तो परमेश्वर ने हाथी नू बचा दिता, गज ग्रह ते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनू, राम कहत बंधन ते टूटा, अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तै पी उतरे पार। हुण तै पी तू ही पार हो जाएगा जे उस नाम दा सहारा तू लेगा। अज जो मैं आप जी दे समक्ष इस दीवान विच बेनती करनी है, एक ता है अज संक्रांत, असी शब्द संग्रांद कह रही है, फगुण दा महीना अज प्रारंभ होया है, 12 माह दी अमृत बाणी अनुसार जो महीनिया दी तरतीब है, ए 12 माह दा अंतला महीना है। पर इस महीने नू जदों आपां विचारने हैं ते सानू ओ गल चेते आवेगी के अज तो 12 महीने पहला, 11 महीने पहला जो उपदेश धन गुरु अर्जुन देव जी ने दिता, उस उपदेश नू जिस ने कमा लिया, फगण दे महीने विच ओनू भाग लग गया। जो कहा सी जिन्ने कमाया, थोड़ा जा संखेप जी बेनती करनी, महापुरख विद्वान सज्जन बैठे ने थे, असानू सब नू पता है भी गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 12 माह ने, तुखारी ते मांच। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने समय नू सफलान लई जिस वंड अनुसार समा वंडिया गया, हजूर ने उस समय दी वंड विच भी बाणी उचारन कर दिती। जे जुग वंडे गए ते गुरु जी ने जुगा राही भी उपदेश दे दिता, सत युग सत, तेता जगी, द्वापर पूजा 4, तीनों जिग जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार, अब कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, कल में एको पुन गुण गोबिंद गाहे। समय दे वंड अनुसार जे जुग बनाए, ते हजूर ने जुग राही भी उपदेश दिता नाम दा। फिर देखो
ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, 12 ਮਸ਼ੀਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 12 ਮਸ਼ੀਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 7 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 7 ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰੈਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਪਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਫਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, 12 ਮਾਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਦੇ 14 ਪਦੇ ਨੇ, 12 ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਗਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਪੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੰਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀਏ

करके विछड़िया पर मिलाप कृपा करके हो सकता है। इत्थे थोड़ा जिहा आपां रुकीए, बाणी विचों देखिए किरपा कालना नाल मिलदी है, किरपा कमाइया नाल मिलदी है नहीं? भाई बाणी दे अनुसार किरपा कालना अपनी नाल नहीं, असलियत है जेड़ी कालना है वह भी किरपा विच ही गिनी जांदी है जदों किसे ऊपर बख्शिश हो जाए, क्योंकि किरपा तो बिना कालना नहीं, ते कालना किरपा वाली होवे ते दात मिल जांदी। फिर इस बेनती नूं समझियो, एक गुरु साहब दे अमृत बचना विच कबीर साहब जी दा शलोक है, उन्हां दा बचन है किन्ने इतनी कालना कीती कमाई कीती कि अपनी खौमे नूं पीण दा पूरा यतन कीता, ते उन्हां उदाहरण लई कि मेहंदी दा पेड़ा जमीन चो निकलदा है, उहदे पत्तियां विच रंगे, पर याद रखो रंग दियां बूंदा कदी मेहंदी दे रुख नालों धरती ते डिगदियां नहीं। जेकर कोई मेहंदी दे बूटे दी टाणी थले खत करे, पत्ते विच रंग जरूर है पर प्रगट नहीं हो रहा, उस मेहंदी दे पत्ते तोड़ के सुकाए जान, उन्हां नूं पीस दईए, पीसदियां होया भी उस मेहंदी दे पत्ते विच रंग है पर प्रगट नहीं होया। जे उस मेहंदी नूं घोल दिता जाए पानी विच, रंग अजे भी मौजूद है पर याद रखो प्रगट नहीं होया। जे मेहंदी कह मेरी कमाई बड़ी, मैं धरती ते पेड़ा बन के उपजी, मैं सर्दी गर्मी नूं सहारिया, मैं चक्की नाल अपने आप नूं पिसा लिया, पर मेरा रंग मेरे विच है, कहनगे बेशक मेहंदी विच रंग है, भांडे विच घोल के मेहंदी रखीए, पर जिन्नी देर तक मालक चरना दियां तलियां ते मेहंदी लांदा नहीं, याद रखे उन्नी देर तक रंग नहीं प्रगट हो सकता। रंग उहदे कोल अपना है पर चरण तो साई दी कृपा ने ना, हाथ तो मालक दी मेहर ने। जे मेहंदी प्रगट करन वाला अपने चरण ही अगे ना करे ते इकला मेहंदी दा रंग की करेगा? अपनी कमाई भावी मेहंदी दी तरह होवे पर प्रगट ता होवेगी जे उहदी कृपा होवेगी। बाबा जी ने बचन कहे ने कि कबीर मेहंदी करके घालिया, घालिया दरते कमाई साधना, आप पीसाए पीसाए अपने आप नू पी दिता, पर इनी कमाई तो बाद तैं शह बात ना पुछिया, कबू ना लाई पाए। मालक ने बात नहीं पुछी, चरना नल नहीं जोड़िया, तैं शह बात ना पुछिया कबू ना लाई पाए। अगे हजूर ने क्या महला तीजा, नानक मेहंदी करके रखिया, कली घालना नहीं सो सौ नदर करे, ओदी कृपा हो जाए ओदी बख्शिश हो जाए, सो सौ नदर करे, आपे पीसे आपे कसे आपे ही लाए ले, ए पिरम प्याला खसम का जय पावे। तैं दे फिर इस तुक नू थोड़ा जसी विचारिए, पहला सी आप पिसाए पिसाए मेहंदी करके घालिया, हुण इस विच गुरु अमरदास जी ने कहा आपे पीसै आपे कसै आपे ही लै लै, जेड़ा पीसना है ओनू भी कृपा च लै जा, जेड़ा लगना है ओनू भी कृपा विच लै जा, ते गुरमुखा जेड़ा रंग प्रगट होना है ओनू भी कृपा विच लै जा। कि कर्मा करके विछोड़े पैंदे ने, देखी किते कालना दा कर्म हंगता बन जाए ते ए भी विछोड़ा पैदा कर सकदा। कालना है पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, कालना तो बिना नहीं पढ़िया जा सकता। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल पुहंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुड़क्यो अदक अंग बुद्ध बांधे, फिर बज गया। इन्हें कर्म ने ता छुड़ाना सी, बाबा जी ने ते क्या आयो सुनन पढ़न को बाणी, पर होया की कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल पुहंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटक्यो अदक अंग बुद्ध बांधे, प्यारे इन विद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका कर्म नहीं। अगली तुक वल ध्यान दिया जे, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेक, कर्म अनेका कीते ने। थोड़ा जा सिर में तरतीब संखेप जा चलने, कर्मा करके विछड़े हां किरपा करके मिलाप होवेगा।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र।

नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामित्र भंगी त्रकाले अन

नमस्तल परनामे समस्तल प्रणास अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सचदा नंद सतरंग प्रणासी करी।

0: मन पत उपजै सालाही सच सूत दरगेंद्र पाए तगना तुट सूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवेलत दाड़ी तगना पैरी तगना ती तगना।

मन बेचैन है, चिंतातुर है, दुखी है, चेहरा दसदा है, अखां दसदा। मन खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, चेहरा दसदा है, पर तन नूं चोट लग गई है, कोई जख्म, कोई पीड़ा मन महसूस करदा। तन दा प्रभाव मन ते पैंदा है, मन दा प्रभाव तन ते पैंदा है। पर मैं फिर अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तन नो भोजन चाहिदा ही चाहिदा है। और ये भी मैं अर्ज करा, चूंकि हवा तो बिना जीवना एक सेकंड भी औखा है, इस वास्ते प्रभु ने आम बनाई है। कोई मनुख हवा कमाण वास्ते एक शहर तो दूजे शहर नहीं जाता, अपने घर तो बाहर नहीं जाता, एक मुल्क तो दूजे मुल्क नहीं जाता। तो प्रभु ने पानी की भी बारिश की हुई है, दरिया भी चलाए हुए ने, पर रोटियां दे दरिया नहीं चलते, रोटियां की बारिश नहीं आती। ये भी महज करते हैं, एक कमाणी पैंदी है, पकानी पैंदी है, इहदे दरिया नहीं चलते, इहदी बारिश नहीं आउंदी। तन भोजन दा पुतला है, हवा दी तरह, पानी दी तरह। यह भोजन आम क्यों नहीं बनाया प्रभु ने? इस वास्ते मनुख दे राही कुछ विकास होवे, यह भोजन इस तों कुछ करवावे। रेलां, मोटरां, गड्डियां बनिया ने, सड़कां बनिया ने, बिल्डिंगां बनिया ने, दो रोटियां बनवा रही हैं ना, और कौन बनवा रहे है? इन्नी जड़ी हलचल है, कौन करा रहे है? भोजन करा रहे है, रोटी करा रहे है। जी किधरे रोटियां दी भी बारिश आउंदी, रोटियां दे भी दरिया चलदे, ते दरियावां दे कंडे मनुख पिया रहना सी, एवें ही सुता ही रहना सी, 24 घंटे कख नहीं करना सी। इतना जो विकास होया है मनुख तो, ये भोजन ने कराया। सब भोजन का विकास है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बहुत वड्डा व्यापारी है, यकीन जानो सब भोजन का विकास है और कुछ भी नहीं है। भजन ने भी बड़ा विकास कराया है। कोई फकीर है, कोई संत है, कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई दार्शनिक है, कोई चिंतक है, कोई भगत है, कोई जोगी है, कोई सन्यासी है, कोई उदासी है। इतना लंबा चौड़ा पसारा भजन ने कराया, मन दी भुख ने कराया। मन विच भजन दी भुख ना आउंदी ते कौन जोगी, कौन संत, कौन भगत, कौन सन्यासी, कौन उदासी, कौन सन्यासी बनना सी, किसने बनना सी, किसने फकीर बनना सी। भजन दी भुख ने संत पैदा कीते, भगत पैदा कीते, जोगी पैदा कीते, सन्यासी पैदा कीते। भोजन दी भुख ने इंजीनियर पैदा कीते, डॉक्टर पैदा कीते, लॉयर पैदा कीते, व्यापारी पैदा कीते, कारोबारी पैदा कीते। बड़ा विकास होया, बहुत विकास होया। गहराई नल लेना जरा। हुण दूसरा नुक्ता मैं पेश करन लगा। अगर भोजन दी किसे नूं भुख ना लगे और टंग दी ना लगे, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने इहदा तन रोगी है, रोगी है, रोगी नूं भुख नहीं लगदी। मैं इसदा जाती तजर्बा पिछले साल मैनूं हो गया, किधरे मैनूं लू लग गई, पिछले साल दी गल है। उपर अलवर दे कोल एक पहाड़ है, ते 3-4 साल तो राजस्थान विच बारिश नहीं पै रही। प्यासे मोर हजारां दी तादाद दे जंगलां च मर गए, हिरन मर गए, सांबर मर गए। अठ दस वड्डे मंदिर ने अलवर विच, उन्हां दीआं सोसाइटियां ने बहुत वड्डे वड्डे टप उपर पहाड़ां ते रखे, ते ट्रैक्टरां दे राहीं, टैंकरां दे राहीं पानी पहुंचाया। मेरे कोल भी आए, कहने लगे कोई उद्दम करो तुसीं वी।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਵਲ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੌੜ

इबादतगाह पैंदी सी। उत्थे एक वाइज भाव कथा करन वाला, रब दी गल करन वाला, लोकां नूं सुना रहा सी खुदा जेड़ा है ला मकान है, ला शरीक है, ला मैदूद है। एक खड़ा होके सुन लग पिया ला मकान, उदा कोई निश्चित थां टिकाणा नहीं। जैसे कलगीधर पातशाह कहिंदे ने अनाम है अठाम है, तू सर्वदेशी है व्यापक है, तेरा निश्चित एक टिकाणा नहीं है। एक टिकाणा उसका हो सकता है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है। अनाम है अठाम है, तेरा कोई निश्चित नाम नहीं है, तू अनाम है। हर चीज अनाम पैदा होती है, असी भी अनाम पैदा होया, बाद सानू नाम दिता जाता है। फिर मनुख ने सारी चीजा नु नाम दिते ने, उन कोई चीज नाम लेके जमदी नहीं, नाम कोई परमात्मा का भी नहीं है। कलगीधर पातशाह कहते हैं अनाम है अठाम है। जाप साहब एक ऐसी अगम्मी बाणी है, और मेरे ख्याल सिर्फ जाप साहब का बोध हो जाए तो मनुख नु पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, पूरी समझ पै जाए। ऐसी अगम्मी रचना है धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। अनाम है अठाम है, हे प्रभु तेरा निश्चित कोई ठिथा टिकाणा नहीं, तेरा कोई नाम नहीं। मनुख ने तेरे तेरे जे तेरे जेड़े गुण देखे ते जिना जिना गुणा तो प्रभावित होए, नाम देंदे गए नाम देंदे गए। कोई किसे गुण तो प्रभावित होया, किसे ने कोई पहलू देखिया, किसे ने कोई पहलू देखिया, फिर भाषा लोगों की अलग अलग, तो भाषा नु आधार बना के, पहलुआ नु आधार बना के हजारा नाम परमात्मा दे हो गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, सदके जाने आ जितने भी तेरे नाम है। गुरु नानक बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मैं हैरान हा सूरज दे कई नाम ने, सूरज नु सूरज कहने ने, रवि कहने ने, बान कहने ने, फिर परशिन दे खुर्शीद कहने ने, आफताब कहने ने, सन कहने ने, इसे एक सूरज नु कोई झगड़ा नहीं करता। आफताब आखो खुर्शीद क्यों कहते हो, खुर्शीद आखो आफताब क्यों कहते हो, सूरज आखो रवि क्यों कहते हो, या रवि आखो पान क्यों कहते हो। पर जिहड़ा महासूरज है ना, वो परमात्मा, इसते बड़े झगड़े ने। राम क्यों कहते हो, अल्लाह आखो, अल्लाह क्यों कहते हो, राम आखो। परमात्मा दे नाम ते अज तक पता नहीं कितने झगड़े हो चुके ने और हो रहे हैं, और पतना कितना खून खराब है। राजनीति करके भी इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म दे नाते होया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, कलगीधर पातशाह कहने हे प्रभु तेरा कोई नाम नहीं। अकाल उस्तत दे तेथे तक कहने ने कहा नाम ताको कहा कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो ना आवे। हे प्रभु मैनु कुछ नहीं पता तेरा की नाम है, मैनु कुछ नहीं पता। गुरु गोविंद सिंह दसवें गुरु नाम, कहा नाम ताको कहा कहे कहावे, कहा मैं बखानो कहे मौ नावे। क्योंकि हर नाम तेरे ते पूरा उतर जाता है। मैं किस तरह कह दे ये नाम है ते नहीं, ये है ते वो नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज इस नूं स्पष्ट कर दें, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, सदके जाने जितने भी तेरे नाम है। जिस जिस नाम नाल तेनू याद कर देन को, इस अयाली ने सुनिया परमात्मा दा कोई घर थां ठिकाणा नहीं है। सीमत ज्यों दी सोचनी सी विचारे दी, ला मकान ला शरीक, उदा कोई शरीक नहीं है। हस पिया ए अयाली, पेड़ा नू वापस ले आ उत्थे, कहिंदा ले खुदा

प्रतापुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूने सैभं गुरु प्रसाद मुकुशरे शास्त्र खटो पिंग ग्रंथ चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगतियों फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ा नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनू इंज बयान करिए जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का उस अरूप का उस गुप्त का खेल है तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने पर इन्हां लहरां का पैदा होना इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है जाना उस दे कोल पैंदा है जिहड़ा अपने तो दूर हो गया ना उस दे कोल जाना है ना उसनू लभना है सिर्फ जागना है सुचेत होना है सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ओ मेरे कोल सी कि मैं उसकी तलाश करता रहा खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है अपने आप नू जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहिंदे ने असीं अधे जागे होया पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है भजन का नहीं। वाहिगुरु करदे आ किसनूं रस आउंदा है नहीं पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रस ना अधी जागी हुई है अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने अधियां सुतियां हुईयां ने। संसार नूं वेख रहियां ने निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने गुरु नूं नहीं सुनदे ना परमात्मा नूं सुनदे।
शरीर संसार नू स्पर्श कर रहे है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर ते जाग जांदा है, सुचेत हो जांदा है, तो रसना नू भजन दा भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जांदा है। उन्हूं जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नू जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जाता है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जाता है। तो मैं इस तरह जब भी किसी महापुरुष नो आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा कि वह मिलिया होया है, जिसनों असी भगत संत कह देने आ, उन्हों पता है कि उसके हाथ तो भी नेड़े है, उसे हाजिर नाजिर है। जब कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसा। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठन की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखु नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते ने कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते ने संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उसके अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहिंदे ने मैं तलाश कर रहे हां उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकदे ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहिंदे ने बाजार नूं, आप कहिंदे ने कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा ना। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है वेचना चाहना, जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं,
पता है मंडी की है सत्संग, हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा, गली गली विच मंदिर है न, सत्संग किधरे किधरे, गली गली विच गुरुद्वारे ने सत्संग किधरे, सुनिया पईयां ने मस्जिदां, खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपा चल रही पी। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने, रैराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुना लो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा, ये सारा दिन ही टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना, बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, ये भी मैं कर मशीन ही होगी, मशीन की तरह की यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है, जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों के बाजार ने, उन्होंने नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्ह दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का काम शुरू होया, बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार के उत्ते अजकल चमड़ा ही बिकता है, या मोटा मांस बिकता है, जौहरिया की दुकाना खोल। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा ये देश है, हीरिया की मंडी, हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर विच हीरियां की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहिंदे ने जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह दे उत्ते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदियां करदियां कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग जाता है, तो कबीर कहिंदे खुशी हो जाती है, मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी विच बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लभ पै, बाजार ते लभ पै, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पारखू नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच, भगवान की कोई समझ नहीं,
आ रहे ने गुरुद्वारिया विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदा विच खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्च है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार में एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनु कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुम वेखे ने, नहीं विशेष रूप से यह नौ आते ने नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनु कह लगे ये तुसी देखे ने, मैं कह नहीं सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो मैं थानू दुकान पर लै जाना अपने सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही नहीं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए, एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होता गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोकी मस्जिद खुदा दी कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वारे गुरु का कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भ्रमण करदिया किसी बाजार में पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है, चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर ये दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही है, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही, और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, ये किन्नी कु दया है, ये किन्ना कु प्रेम है, ये दृष्टि विच कितनी समानता है, ये किन्ना कु निर्वैर है, किन्ना कु निर्भय है, इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना कु धार्मिक है, और किस तरह नापोगे। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं नाही को, गुण ते सारे उस दे ने। रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे छो रही है, पर रोशनी ते सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहिंदे ने भरमन करदिया करदिया खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया, उन्हें समझ आया समदृष्टि किसनु कहिंदे, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्हें परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता है, चलो पारखू मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है,
ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ। ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਥਰੋਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਖ ਅਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉਂ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਪਰਿਕਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ,
विसारे दूजा भाव दियो, धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत मिले। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखता है, पूर्णे पाने कहते, ये सब पूर्णे पाने ने, धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे, अपना मन भेट कर देंगे। जिस दिन अपना मन देन नू जी करे

0: जैसे गुरु की मत आई सारे ही दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे ही परमात्मा है, गुरु की मत दे ही सारा आनंद परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन ते सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार हो गए कि यह मन भेट कर देना है, गुरु की मत लै लेनी है, इतने शब्द प्रवान करना। सतगुर रहमत करन बख्शिश करन ओ महान हीरा ओ महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त हो गए, जिसकी चर्चा जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ये पावन स्थान जिथे मैं देखदा वाकई ये छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है, संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन संगत चलती रहे पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल टुकदी छावां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack 2 ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com. An initiative of Pulse FM Cares.
6: Kab gal laenge prabhu mohe

पदार्थ तन की लोड़ है, मन की नहीं। जब मन अपनी लोभ बना ले लोड़ बना लेंद इस लोभ कहते हैं। शक्ति ताकत प्रभुता ये बाहर की कोई सहूलत वास्ते चाहिए होनी है तन, लेकिन जब मन अपनी लोड़ बना लेंद यह हंकार बन जाता है, प्रबल हंकार बन जाता है। जो सिर्फ तन की लोड़ है, मन ने अपनी लोड़ बना लिया है, जब प्राप्त हो जाता है मन की तृप्ति नहीं, तृप्ति नहीं। एक निर्धन ते निर्धन है, चोटी का धनवान भी निर्धन है, ये भी मैरज कर दिया, इस चक्कर च ना पैना। बड़े बड़े राजे महाराजे जब भिक्षु बनते ने या किसी भिक्षु के अगों हथ जोड़ के खड़े होंगे ने, उदों हैरानगी आती लै है गए ते राजे महाराजे करते कीते ना। गुरु नानक इसका जिक्र भी कर दे, रोवे राजे कन्न पड़ाए घर घर मांगे बिखिया जग, है गए ते शैन शासन, लेकिन पता चलिया ते तन की लोड़ सेवें मन की लोड़ बनाई। पदार्थ तन की लोड़ ने, जब मन की लोड़ बना लईए मन नहीं टिकता। किसी राज सिंघासन से मन नहीं टिकता, तन नहीं बैठता। किसी पदार्थ विच मन नहीं टिकता, सिर्फ तन नहीं जुड़ता, यह भी मर्ज कर। किसी रूप विच मन नहीं बैठता, सिर्फ वक्ति है, वक्ति है, मन की लोड़ नहीं। मन की लोड़ परमात्मा है, मन की लोड़ प्रभु है, प्रभुता नहीं है। मन की लोड़ राम है, काम नहीं है। मन की लोड़ परमात्मा है, पदार्थ नहीं है। मन की लोड़ प्रभु है, प्रभुता नहीं है। जब कोई प्रभुता नू, पदार्थ नू, काम नू अपने मन की लोड़ बना लेंदा है, भटकना वध जांदी है, वध जांदी है, भटकना वध जांदी है, क्योंकि वो टिकदा नहीं, वो किधरे भी टिकदा नहीं। मन भटकदा है काल विच, समय विच, गुजरे हुए समय दियां यादां विच भटकदा है। मन नूं भटकण वास्ते कोई स्थान नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए। जगह चाहिए तन नूं, दौड़न भजन वास्ते, कम करन वास्ते स्थान चाहिए तन नूं, मन नूं नहीं चाहिए। मन ते चार फुट की जगह च भी बंदा बैठा है, मन हजारां मील की वाट तय करेगा, वो समय च भटकदा है, वो वक्त विच भटकदा है। गुजरे हुए समय दियां यादां विच भटकेगा। तुसी आखोगे क्यों भटकदा है, यादां विच क्यों भटकदा है? कुछ मिलिया से बड़ी खुशी मिली सी, मिलके कुछ मन भावदा मिलिया से बड़ी खुशी मिली, फिर बिछड़ गया, बड़ी चोट लगी, बड़ा दुख होया। यादां किस दियां होंदियां? दुख सुख दियां। जद मनुख कोई यादां विच बैठा होवे या सुखां नूं याद कर रहा होवेगा या दुखां नूं, और की याद करदा है, और की याद करदा है? बगौर मुताला कर लेना। आप सारे सियाणे बैठे हो, कुछ मिलिया सी, कुछ भी मिलिया सी, कोई पदार्थ मिलिया सी, मित्र मिलिया सी, पुत्र मिलिया सी, भरा मिलिया सी, कोई प्रभुता मिली सी, कुछ भी मिलिया सी, मिलके बड़ी खुशी हुई सी, याद आउंदी है, फिर बिछड़ गई। समय दिच जो कुछ भी मिलता है बिछड़ता है, कुछ भी मिलता है। ये जीवन में मिले है बिछड़ेगा, जवानी मिली है बिछड़ेगी, बचपना मिलिया बिछड़ गया। मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना इस समय का स्वभाव है, काल का स्वभाव है। मिलिया से बड़ी खुशी मिली, याद आउंदी है, बिछड़ गया, बड़ी चोट लगी है, बड़ा दुख होया, याद आउंदा है। यादा दुख सुख दियां होंदियां, ते यादा का संबंध गुजरे हुए समय नाल आउंदा है। उंज समा एको ही है, कदी चक्कर च ना पैना कि समय